श्रोताओं सुप्रभात। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 38 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का

0: निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:05 हो चुके हैं श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये देशगान समूह स्वर में। लीजिए, आप सुनिए। हरिओम शरण और नंदिनी शरण, इनकी आवाजों में कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत।

उदित नारायण और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाज में गाइड फिल्म का ये प्यारा सा भक्ति गीत।

हे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम वंदना। अब आप सुनेंगे जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में ये भक्ति गीत। इसी भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम चिंतन का। आलेख है C.S. तिवारी का। तो लीजिए सुनते हैं आज के विचार कार्यक्रम चिंतन में।
1: अनपेक्षित और अवांछित रूप से बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आता है। अब सर्वप्रथम हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्रोध आने का कारण क्या है। यदि कोई कार्य हमारे मनोनुकूल नहीं हो पाता तो हमें क्रोध आ जाता है। कोई व्यक्ति लगातार हमारे कार्य में अनावश्यक रूप से टांग अड़ाता है तो हमें क्रोध आ जाता है। हमारे काफ़ी प्रयास और मेहनत के बाद भी यदि उसका अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है। जब एक अनुचित और असत्य बात को उसकी असत्यता की जानकारी रखते हुए भी लोग सत्य प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है। यदि कोई हमारी किसी कमजोरी, सीधाई और सहृदयता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करता है तो हमें क्रोध आता देखा गया है। इसके अतिरिक्त चिंता, रोग, भय या शोक जो हमारी कमजोर मानसिक अवस्थाएं होती हैं उनमें भी हमें क्रोध आता है। हमारे साथ अन्याय हो तो भी हमें क्रोध आता है। क्रोध चाहे जिस रूप या कारण से आए उसकी परिणति स्वयं की कमजोरी या असहायता के रूप में ही सामने आती है। क्रोध से जितना दूसरों को नुकसान पहुंचता है उससे कहीं अधिक नुकसान स्वयं को होता है तथा वह व्यक्ति को जहां कमजोर बनाती है वहीं उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। पूरे संसार में यह बात सामान्य रूप से दिखाई देती है कि बहुत से झगड़े और अपराधों का कारण मनुष्य का क्रोध ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध का कारण विषयों का चिंतन होता है। विषयों के चिंतन करने से व्यक्ति उनके प्रति आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है और इस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक की स्थिति उत्पन्न होती है। अविवेकी व्यक्ति कभी सही निर्णय, सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका कारण यह है कि अविवेक से मनुष्य की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। फिर भला एक बुद्धिहीन भ्रमित व्यक्ति से लक्ष्य प्राप्ति की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। दूसरे शब्दों में इसे भी क्रोध का कारण माना जा सकता है कि हमारी बढ़ी हुई इच्छाएं और कामनाएं हमें क्रोध करने पर विवश करती हैं। जैसे जैसे आदमी प्रगति और विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है वह यथार्थ और सामाजिकता की भावना को भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक महत्व देने लगा है और जब ऐसे दो व्यक्तियों के हित या स्वार्थ आपस में टकराते हैं तो क्रोध की भावना को जन्म देते हैं। क्रोध को समाज में रुग्ण मानसिकता का दर्जा दिया गया है। प्रायः यह भी कहा जाता है कि बूढ़े और बीमार व्यक्ति को जल्दी क्रोध आता है, जिसके पीछे कारण यही है कि क्रोध के रूप में हमारी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता

0: ही प्रकट होती है। क्रोध को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा क्रोधी व्यक्ति को अपमान की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। किसी व्यक्ति की योग्यता या गुण क्रोध के दुर्गुण होने से दबकर रह जाते हैं तथा ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज में भी उस सम्मान की प्राप्ति नहीं होती जिसका वह वास्तव में हकदार है। आज मनुष्य ने चांद और सितारों पर विजय हासिल की है और वह प्रगति के सोपान गढ़ते चला जा रहा है, परंतु वह आज भी क्रोध जैसे दुर्गुण पर विजय पाने में असफल ही रहा है। जो व्यक्तिगत दुर्गुण होने के साथ ही पूरे समाज पर असर डालती है और समाज की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। यदि हम प्रगति, उन्नति, विकास और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप पर नियंत्रण करके, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण करके क्रोध जैसी बुराई से बचना ही होगा, तभी हमारा और समाज का विकास संभव है।
1: सी एस तिवारी, इनका आलेख अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:35 हो चुके हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है ए हरिहरन का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था ए हरिहरण का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण जिसमें हम देते हैं जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो कार्यक्रम विवरण इस प्रकार से है।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। वहीं 7:20 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। सुबह 8:00 समाचार प्रभात होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 8:30 पर होगा समन्वित रूपक आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 9:00 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। सुबह 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आपके पसंद के गीतों का कार्यक्रम होगा। सुबह 11:00 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। वहीं 2:30 पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 नया भारत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। दोपहर 3:55 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त विमोचन कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम का संबोधन। हमारे सांध्यकालीन प्रसारण सभा का आगाज होगा 5:00 कार्यक्रम युवाणी के साथ में। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। वहीं 6:00 गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 7:00 कार्यक्रम विवरण होगा और 7:05 पर दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार होंगे। 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। और किसान साथियों का कार्यक्रम होगा 7:30 पर किसानवाणी।

रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। रात्रि 9 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। साथ ही रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:50 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसमें पहला नगमा ये

बरसात की एक रात, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत आरडी बर्मन का था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। लीजिए आप सुनिए हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत दिया था आनंद बख्शी ने ही। लीजिए अब सुनिए वो सात दिन, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अगर तुम ना होते, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने। लीजिए अब सुनिए धर्मात्मा फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ है मुकेश और कंचन की।

श्रोताओं, धर्मात्मा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 7:10 होने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपये की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज

0: एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 7:20 हो चुके हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन आज के इस अंक में। कार्यक्रम का नाम आपको पता ही है, कार्यक्रम है हमारा नमस्कार बालाघाट, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपके साथ गीता मिश्राम। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम इस प्यारी सी सुबह और कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इस सुविचार से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन का अर्थ है कि व्यक्ति में अहंकार और घमंड महानता तरक्की के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। सच्चा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति वही है जिसकी उपलब्धियां जितनी बड़ी होती है उसका व्यवहार उतना ही सरल, शांत और विनम्र होता है। विनम्रता ही इंसान को सही मायने में महान और आदरणीय आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करती है। टैगोर के ये कथन हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए,

0: पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज का इतिहास कहता है कि साल 1998 में विश्वनाथ आनंद ने ब्लामिदीर केमकिन को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था आज ही के दिन। वहीं 1898 में 20 जून को YMCA की स्थापना हुई। 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, को लोगों के लिए खोला गया था। आज ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। 1916 में पुणे में SNTD महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 20 जून के दिन। साथ ही साल 2000 में 20 जून के दिन काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। अमेरिकी कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई थी आज ही के दिन, यानी 20 जून सन 2002 में। रूस मालवाहक यान M-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था 20 जून 2005 में। प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी 2014 में आज ही के दिन। 1837 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश सिंहासन पर आसीन हुई थी 20 जून के दिन। वहीं इतिहास में वेस्ट वर्जीनिया आधिकारिक तौर पर अमेरिका का 35वां राज्य बना 20 जून 1863 में। आज ही के दिन अमेरिकन ईगल डे भी मनाया जाता है। दरअसल अमेरिकन ईगल आज़ादी और रखवाली का प्रतीक माना जाता है, जिसे प्रेरित होकर इस दिन को मनाया जाता है। ये 20 जून 1819 से इसकी शुरुआत की गई थी। 20 जून यानी आज ही के दिन अर्जेंटीना का नेशनल फ्लैग डे भी मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है श्रोताओं, क्योंकि इस दिन 1820 में अर्जेंटीना झंडे के निर्माता मैनुअल बेंग्रोन यानी मैनुअल बेंग्रोन की मृत्यु हुई थी। 1840 में आज ही के दिन सैम्यूल मोर्स को अपने आविष्कार टेलीग्राफ के लिए पेटेंट मिला था। इन्हें संचार के विशेष माध्यम मोर्स कोड के लिए भी जाना जाता है। प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा 2014

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, इतिहास में अब बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया से रुखसत ली थी। 1965 में वेंकटेश नारायण तिवारी, जो कि हिंदी के ध्वजवाहक पत्रकार और साहित्यकार थे, इनका

आज ही के दिन सन 1965 में हुआ था। साथ ही जिनका आज जन्मदिन है उन श्रोताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वे महान व्यक्ति जिनका आज जन्मदिन है वे हैं लॉर्ड वेलेजली का जन्म सन 1768 में हुआ था, वे भारत के गवर्नर जनरल थे। साथ ही सन 1869 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकिकार भुवनेश्वर का जन्म 20 जून साल 1910 में हुआ था। साल 1923 में जन्म हुआ था गोरे किशोर घोष का, वे कुशल पत्रकार तथा लेखक थे। भारतीय प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जन्म हुआ था 1940 में 20 जून के दिन। विक्रम सेठ का जन्म हुआ था 1952 में 20 जून के दिन, वे जाने माने साहित्यकार उपन्यासकार और कवि थे। साथ ही श्रोताओं आज जन्मदिन है द्रौपदी मुर्मू यानी भारत की 15वीं राष्ट्रपति का। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा इसमें एक आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1979 से 1983 जो है उस सन में ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक क्लर्क के रूप में कार्य किया था इन्होंने। और भारत की राष्ट्रपति साल 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामांकित किया गया था। भारी जीत के साथ ही उन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, धैर्य और राजनीतिक प्रतिबद्धता की एक अनूठी मिसाल है। साथ ही वे जो है देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति में से एक है, जो कि हमारे आज के वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा उदाहरण बन के शामिल हुई है। क्योंकि महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये इस चीज़ के लिए उदाहरण साबित हुई है। कभी डरना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कल हम 21 जून योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। साथ ही अपने आप को बेहतर करने यानी कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग का कितना महत्व है वो तो आप जानते ही हैं। और योग करने के लिए हम जगह कौन सी ढूंढते हैं, बहुत ही अच्छी, जहां से ताज़ी फ्रेश हवा आती हो, जहां पेड़ पौधे रहते हों, है ना, ऐसी जगह को ढूंढते हैं। लेकिन जब पेड़ लगाने की बात आती है तो हमारे बालाघाट में ही बहुत सारी भी जगह है और बहुत कम भी जगह है जहाँ पे हमें बहुत हरियाली देखने को मिलती है, ठीक है ना। लेकिन जुलाई का महीना वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि अब बरसात लगने ही वाली है और मानसून आने ही वाले हैं, और इस समय पौधे का विकास जो होता है बरसात में प्राकृतिक रूप से बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए जुलाई में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप सारे बीज जो होते हैं ना, अभी आम खा रहे हैं और जामुन खा रहे हैं, उनके बीज या जो भी है बीज को संभाल के रखिए ताकि आप उसे लगा सकें। इन 7 दिनों में एक सप्ताह में हम जो है वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। और पिछले 2 वर्षों की गर्मी ने हमें ये तो समझा ही दिया है कि पेड़ पौधे लगाना और बचाना कितना ज़रूरी है, तथा वनों और जंगलों की कितनी आवश्यकता है हमारे इस देश में, है ना। श्रोताओं, आज जो है ज्ञान का पिटारा हम इसी में से लेते हैं ना, और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है, वन और जंगल में क्या अंतर है, आपको पता है? समय दे आपको? नहीं, चलिए बता ही देते हैं, वैसे भी हमारे पास भी समय नहीं होता है। वन और जंगल दोनों ही पेड़ और वनस्पतियों से घिरे प्राकृतिक क्षेत्रों का संदर्भित रूप होते हैं, है ना। लेकिन इसमें घनत्व, जलवायु और संरचना का मुख्य अंतर होता है, जो कि इस प्रकार से है। वन वास्तव में एक सुनियोजित और संगठित प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जबकि जंगल जो होता है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक वह घना होता है, जो कि अपने आप उगने वाले पेड़ जो होते हैं ना, ऐसा होता है जहां सब कुछ अपने आप उगता है। वन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि जंगल जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, इन पर डायरेक्ट यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वन में पेड़ पौधों के बीच थोड़ा रास्ता मिल सकता है आने जाने के लिए, जबकि जंगल में जाने पर मनुष्य के लिए रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर रोशनी भी कम पहुंचती है, क्योंकि पेड़ बहुत घने होते हैं। वनों का उपयोग जो होता है वो अधिकतर लकड़ी, मेडिसिन के लिए जड़ी बूटी के रूप में या रिसर्च में किया जाता है, जबकि जंगल जंगली जानवरों का घर होते हैं, जहां पर जाना बहुत ही थोड़ा सा रिस्की होता है। वन में जाना थोड़ा सुरक्षित होता है, क्योंकि वहां कंट्रोल एरिया होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लेकिन जंगल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से जंगली जानवरों से भरा होता है, जो सुरक्षित नहीं है, वहां जाना असुरक्षित होता है। वन में मानव योगदान होता है, मानव योगदान देखने को मिलता है, जबकि जंगल में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क जो होते हैं वो वन के उदाहरण हैं, जबकि अमेजोन का जंगल जो है वो जंगल के उदाहरण है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वन और जंगल में क्या अंतर है। कुछ और भी बातें होंगी, अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें हाथ लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, और नमस्कार बालाघाट में अब बात कर लेते हैं थोड़े से मौसम की, क्योंकि मौसम जहां बरसात का मौसम मानसून जो है 15 से 20 जून तक के आ जाना चाहिए था, वो अब 25 जून तक के आने वाला है ना। मानसून का मौसम अपने साथ ताज़ी हवाएं, ठंडा तापमान और चिलचिलाती गर्मी से राहत लेकर आता है, लेकिन बारिश को सुखद बनाने वाली यही परिस्थितियां बीमारियों के बढ़ने के लिए भी अनुकूल होती हैं, है ना। इसीलिए बारिश के शुरू होने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बाल्टियां, कूलर और पौधों की ट्रे जिसमें पानी भरता है या पानी भर सकता है, उनको खाली कर दे, साफ कर दे या उल्टा करके रख दे, जैसे आप समझ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। संग्रहित पानी को निकासी की जगह बनाएं, आसपास साफ सफाई रखें ताकि पानी जमा न हो। खिड़कियों पर जाली लगाएं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दरवाज़ा खिड़कियां बंद रखें। लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दें। इलेक्ट्रिक सामान जिनके वायर कहीं से कट फट गए हैं या हल्का करंट पास करते हैं, उनकी जांच करवा लें। अगर घर के पास बड़े बड़े पेड़ हैं या वायर लाइनिंग जहां से जा रही है वहां पे पेड़ है, तो उन पेड़ों की कटिंग छटिंग करवा लें ताकि बरसात के दिनों में उन पेड़ों के डरने या गिरने का डर ना हो। साथ ही जो है बरसात का मौसम कई सारी परेशानियों के साथ में आता है, इसलिए खान पान पर भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे और बुजुर्ग, इन पर सबसे पहले असर देखने को मिलता है। वैसे तो अब किसी उम्र का कुछ रहा नहीं श्रोताओं, सबको जब मौसम बदलता है तो असर दिखना शुरुआत हो जाती है। तो कल योग दिवस पर

बहुत अच्छे से योग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। रोजाना योगासन करते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: हमारे युवा साथियों की बात कर ले तो उनके लिए आज की रोजगार सूचना कुछ इस प्रकार से है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने ASI पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें महिला और पुरुष भर्ती के लिए CISF ASI पैरामेडिकल स्टाफ में 24 पदों पर आवेदन किया जा सकता है। पदों का नाम है ASI फार्मेसिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन। पूरे भारत में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जो कि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य तौर पर आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है 18 वर्ष से 24 वर्ष।

योग्यता और पदों के अनुसार इसमें अलग अलग जो है योग्यता निर्धारित की गई है, जिसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है cisft.cisf.gov.in। इस पर जाकर आप इनके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अब घड़ी जो है इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का, क्योंकि सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला था प्रदीप कुमार येड़े और मुकेश कोस्टा का। प्रस्तुति थी कुमार विक्रम सिंह की और मैं थी आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ गीता मिश्रा। तो दीजिए अनुमति आज के इस अंक से, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट हमारे साथ।

0: नमस्कार बालाघाट।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित।

0: विपरीत। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन

0: करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:15 हुए हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम की शुरुआत की हमने जगजीत सिंह के गाए इस गजल के साथ में ही। लीजिए आप सुनिए चंदन दास की गाई ये प्यारी सी गजल

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम में अगली गजल जगजीत सिंह की ही आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में जगजीत सिंह के गाए इस गजल के साथ ही हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम यही हम आज समाप्त करते हैं। वक्त हो चला है समन्वित कार्यक्रम का आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे

श्रोताओ नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरमई सबेरा। श्रोताओ, हम रोज रेडियो पर न जाने कितने गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन गानों पर हम झूमते हैं उनके पीछे एक पूरी कहानी होती है। कभी कोई गाना बाथरूम में रिकॉर्ड होता है तो कभी किसी गाने के लिए 100-100 अंतरे भी रिजेक्ट होते हैं। आज के इस सफर में मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ऐसे ही एवरग्रीन नगमे और खोलूंगी उनकी डायरी, उनके पीछे छिपे दिलचस्प रोचक तथ्य, रोचक पन्ने। तो बने रहिए मेरे साथ।

श्रोताओ, अब मैं जो आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, इस गाने में जो शुरुआती म्यूजिक है, जहाँ किशोर कुमार गैराज के औजारों से आवाज़ें निकालते हैं, वो कोई पहले से तय की स्क्रिप्ट नहीं थी। रिकॉर्डिंग के दिन किशोर कुमार स्टूडियो में बेहद चुलबुले मूड में थे। उन्होंने टेबल, चाबियाँ और गैराज के बर्तनों जैसी दिखने वाली चीज़ों को थपथपाना शुरू कर दिया। संगीतकार SD बर्मन को यह पागलपन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे गाने की ओरिजिनल ट्रैक में शामिल कर लिया। गाना रिकॉर्ड करते समय किशोरदा ने कई जगह अपनी मर्जी से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाली, जिसने इस गाने को अमर बना दिया।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। श्रोताओ, चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और अब मैं आपको बता देती हूँ फिल्म का नाम। फिल्म है मुगल ए आजम, गायिका है लता मंगेशकर, और अब सुनाती हूँ इस गाने के पीछे की कहानी। श्रोताओ, इस एक गाने को फाइनल करने के लिए संगीत नौशाद और गीतकार शकील बदायूं के बीच रात भर में 105 गाने रिजेक्ट हुए थे। सुबह के वक्त जब शकील साहब ने तंग आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन बनाई, एक लोक धुन की लाइन गुनगुनाई, वो थी प्रेम किया क्या चोरी की। नौशाद साहब को ये आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने इसे प्यार किया तो डरना क्या में बदल दिया। श्रोताओं, उस जमाने में आज की तरह कंप्यूटर या साउंड मिक्सर नहीं होते थे। गाने में अनारकली की आवाज में जो गूंज सुनाई देती है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए आप जानते हैं क्या किया गया? उसे रिकॉर्ड करने के लिए लता मंगेशकर जी को स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाने के लिए कहा गया, ताकि वो नेचुरल गूंज रिकॉर्ड हो जाए। और फिर ये गाना रिकॉर्ड हो गया।

श्रोताओ, अब मैं जो आपको गीत सुनाने जा रही हूं उसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, स्वर है लता मंगेशकर की। श्रोताओ, ये गीत अपनी खूबसूरत और शांत धुन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक विदेशी कनेक्शन है। शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन एक बार मुंबई के एक क्लब में बैठे थे। वहां उन्होंने एक मरीन बैंड को एक अंग्रेजी गाना इंटरनेशनल बजाते हुए सुना। वो धुन जयकिशन के दिमाग में ऐसी बैठी कि उन्होंने रात को ही आकर उसकी तर्ज पर एक भारतीय धुन तैयार कर दी। जब शैलेंद्र साहब ने इस पर बोल लिखे और लता जी ने इसे अपनी मखमली आवाज दी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बेहद देसी और जज्बाती गाने की प्रेरणा एक वेस्टर्न क्लब से आई थी। वो गीत है इस तरह है।

श्रोताओ, अगला गीत हमने लिया है फिल्म धड़कन से। इस गाने की शुरुआत में जो सुनील शेट्टी की भारी भरकम आवाज में मशहूर डायलॉग है, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता। श्रोताओं को ये जानकर बहुत मज़ा आएगा कि जब इस गाने का ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड और रिलीज किया गया तब फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई थी। संगीतकार नदीम श्रवण ने जब ये धुन बनाई तो निर्देशक धर्मेश दर्शन को लगा कि इस गाने में एक अजीब सा ठहराव और जुनून है। उन्होंने सुनील शेट्टी को फिल्म साइन करने से पहले ही स्टूडियो बुलाया और गाने के शुरुआत में ही ये डायलॉग रिकॉर्ड करवा लिया। यानी गाना बाद में हिट हुआ और डायलॉग की वजह से उसकी हाइप पहले ही रेडियो और कैसेट पर बन चुकी थी। ये गीत है ये।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस गीत का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। ये गाना हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा गीत था जिसने पूरा का पूरा स्लो मोशन में शूट किया गया था, लेकिन इसके पीछे की म्यूज़िक रिकॉर्डिंग की कहानी और भी दिलचस्प है। संगीतकार जतिन ललित ने जब इस गाने में पियानो की वो मशहूर धुन जोड़ी, जो उस जमाने के कई बड़े जानकारों ने कहा कि ये धुन बहुत वेस्टर्न लगती है और भारतीय श्रोता इसे पसंद नहीं करेंगे, मगर जतिन ललित अड़े रहे। उदित नारायण ने जब इसे गाया तो उन्होंने अपनी आवाज़ में जो मासूमियत और सांसें छोड़ी, उससे इस गाने को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा यूथ एंथम बना दिया। आज भी इस गाने के पियानो नोट्स बजते ही लोग पहचान जाते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुरमई सबेरा को कुछ समय के लिए विराम देते हैं। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन के लिए प्रदेश पुलिस को 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया। राज्य शासन ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकास खंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। एमपीआईडीसी मुख्यालय भोपाल में कल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस

बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है, वैवाहिक रिश्तों की जटिलता और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए, गृह प्रवेश।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

कार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है, और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नास का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में

0: आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 10:05 हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम आपकी पसंद का।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आपकी पसंद में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ में। लेकिन आप सभी ने जो ये प्यारे प्यारे खत हमें लिखकर भेजे हैं, मैसेज किया है और अपने पसंद के गीतों की फरमाइशी की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

डंकी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी खत मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोतागण हैं सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता, शौर्य, लोकेश्वर जोशी ने। इन्होंने सुनना चाहा था ये प्यारा सा गीत। चलिए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुखी। इस फिल्म का ये वाला गीत जिसके लिए हमें फरमाइश मिली है सिरामा आमगांव गोंदिया से सुभाष आर से, सोनम सोनवाने, नीलम सोनवाने और मनोज लखनपाल और दिनेश की। इन्होंने सुनना चाहा है सुखी फिल्म का गीत जिसमें आवाज़ है सचेत टंडन की, गीतकार है रश्मि विराग। तो चलिए सुनते हैं इन श्रोताओं की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का है ये कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी पसंद। मैं हूँ गीता मिश्रा और ये प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं लेते हैं अगला खत जो हमें मिला है वार्ड नंबर 25 प्रेम नगर से बालाघाट। अनुभव दुबे, अर्चना कौर, पूजा कौसे और कांची शुभम सुषमा डोंगरे, इन्होंने सुनना चाहा है साजन फिल्म का गीत

0: वार्ड नंबर 25 प्रेमनगर से इन श्रोताओं का ये हद था अनुभव, अर्चना, पूजा, कांची, शुभम और सुषमा डोंगरे। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा था साजन फिल्म का गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज थी और संगीत नदीम श्रवण का था।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे मैं हूं ना, इस फिल्म का गीत जिसमें आवाज थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल की, संगीत अनु मलिक का था और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली थी श्रोताओं शीतल, बाहेश्वर, छोटी, भारती, कृतिका, दुर्गा लिखने वाले हैं ये श्रोतागण, और इन्होंने खत लिखा था हमें सरेखा बालाघाट से। और इन श्रोताओं की पसंद पर अभी आपने सुना था मैं हूं ना फिल्म का गीत। आप श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद खत लिखने के लिए। ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए और सुनते रहिए अपने पसंद के गीत। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला खत जो हमें मिला है भरवेली बालाघाट से। लिखने वाले श्रोतागण हैं अरुण, सोनूपवंशी और है सोनम, रेवती, रजनी, अंजू, अमिता, रेखा। इन्होंने सुनना चाहा है जेलर फिल्म का गीत। तो चलिए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनवा लेते हैं आपको जेलर फिल्म का गीत। बने रहिए आकाशवाणी बालाघाट, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद।

जेलर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, सिंधुजा श्रीनिवास की आवाज थी। श्रोताओं, कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और कल की थीम आपको पता ही होगी, और नहीं पता है तो सुनिए, थीम है कल की बढ़ती उम्र के साथ योग। श्रोताओं, आज के इस दिनचर्या में, जो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए या सेहत बनाए रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, तो कल योग दिवस की आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ।

कुमार सानू, साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म का गीत, समीर के बोल थे और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोतागण ने, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इतवारी गंज बालाघाट से सुशील रॉय, रमणिक नायडू, मीनू नायडू, निषाद नायडू, मोनू, अंशु और रमन ने। साथ ही सरस्वती नगर बालाघाट से भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली थी, जिन श्रोताओं के नाम हैं राधेश्याम राव मानकर, माधुरी मानकर, स्वीटी, अलका चौधरी। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हत लिखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए।

द डिप्लोमेट। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया की। गीत कौसर मुनीम के थे और संगीत दिया था अनुराग ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइशी खत मिला था बालाघाट से। लिखने वाले श्रोतागण हैं राजकुमार गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रवीना गजबिये, पूजा जैन, भूपेंद्र, संतोष श्रीवास्तव, योगेश, दिनेश, दिवेश, अमिता, मोनू, हिताली और समस्त मोरे परिवार। इन श्रोताओं की फरमाइश पर हमने अभी आपको सुनवाया था द डिप्लोमेट फिल्म का गीत। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है जो कि इस प्रकार है। लिखने वाले श्रोतागण हैं बेला पाचे, लता यादव, जो कि लिखा है इन्होंने हत कोसमी बालाघाट से, और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म है दूसरा आदमी, इसका गीत जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, संगीत राजेश रोशन का है, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने। साथ ही इसी गीत के लिए हमें और एक श्रोतागण की फरमाइश मिला है। लिखने वाले श्रोतागण हैं हमारे वसुंधरा बंसोड़, रोहित बंसोड़, विनीत बंसोड़, सुबोध बंसोड़, ये लिखने वाले हैं कोसमी बालाघाट से ही।

श्रोताओं, आज द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका आज जन्मदिन है। द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला है और सबसे युवा राष्ट्रपतियों में से एक है। आज उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से, हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से और सभी श्रोतागणों की ओर से उनको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

विजय भगत, प्रदीप हरिनखेड़े, देवेंद्र ठाकरे, सुरेश शिवालिया, जितेंद्र भगत, इन श्रोताओं ने हमें खत लिखा था गर्रा बालाघाट से और इन्होंने सुनना चाहा था सोल्जर फिल्म का गीत जो अभी हमने सुनवाया था आपको, जिसमें आवाज़ थी अलका याग्निक की और संगीत था अनु मलिक का। अगला खत शामिल करते हैं जो कि हमें मिला है बिरसोला महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोतागण हैं प्रवेश कोहरे, पूजा कोहरे, त्रिवेणी, राहुल और इनके मम्मी पापा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हर लिखने के लिए और इन्होंने सुनना चाहा है श्रोताओं ये प्यारा सा गीत

सत्य प्रेम की कथा, इस फिल्म का गीत सुनना चाहा था हमारे श्रोतागण ने। और इस गीत में आवाज़ थी मीत ब्रोस, परंपरा टंडन, पीयूष मेहरोलिया की। संगीत मीत का था, गीत के बोल लिखे थे कुमार ने। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है सालेटेका से, कमल राउत, अरुणा सहारे, गुड्डू निवारे, सुनील कटरे, निशा निवारे और साहित्य सहारे, किशोर कुमार बुरे, राम कुमार बुरे, अजय कोल्हे और इनके सभी मित्रगणों ने। इन्होंने सुनना चाहा है कलयुग फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ है राहत फतेह अली खां की और संगीत है अनु मलिक का। तो चलिए श्रोता सुनते हैं हमारे इन प्यारे श्रोतागणों के अनुरोध पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ ही बस अब अनुमति दीजिए आज के इस अंक से अलविदा कहने का। मैं थी गीता मिश्रा इस कार्यक्रम को लेकर। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारा पता तो नोट कर लीजिए ताकि आप फिर से हमें खत लिख सके और अपने पसंद के गीत सुन सके। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बालाघाट मध्य प्रदेश। चलिए अब आज के इस अंक से दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

छू कर मेरे मन को, याराना फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विविध भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से

0: नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में।
1: जी
0: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
1: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए,
0: बढ़ाया जाए।
1: है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
0: देखिए, रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो आपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
0: थोड़ा
1: की?
0: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट,
1: जी कम से
0: जी
1: कम 20 मिनट।
0: कम से कम 20 मिनट,
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा
0: दिल से
1: वो?
0: निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पर सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है, वो क्या क्या करे?
0: देखिए, सबसे फर्स्ट जो पहला है,
1: जी
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड,
1: हाँ
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन,
1: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम
0: आसन।
1: में कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो बहुत जरूरी हैं? भ्रामरी, शीतली,
0: जी
1: है
0: जी जी
1: ना?
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके
1: हाँ,
0: अपने फेफड़े को,
1: सबसे
0: लंग्स
1: पहले
0: को क्लीन
1: भस्त्रिका
0: करते
1: करना
0: हैं,
1: है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति करनी
0: कपालभाति,
1: है। जी
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, अंत
1: इतने
0: में
1: सारे कर रहे
0: ओम।
1: हैं?
0: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए,
1: अच्छा
0: ये पूरा
1: ठीक है ठीक
0: पैकेज
1: है।
0: हो गया,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे,
0: जी
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है,
1: जी
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है,
1: अच्छा
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको। हम
1: अच्छा
0: लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं,
1: जी जी
0: जिसमें तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है,
1: जी
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी
0: और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
1: अच्छा
0: हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं, जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है,
1: जी
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना,
0: तो
1: हम रेडियो पर हैं
0: जी
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं
1: पर
0: सकते।
1: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से
0: हाँ,
1: आंखों को
0: आंखों
1: ढका
0: को बंद
1: जाता
0: करते
1: है।
0: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
1: जी
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है, और हमिंग करना चाहिए
1: हमिंग
0: बटरफ्लाइट
1: करना
0: की
1: है।
0: तरह।

0: और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी।
1: में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है,
0: जी
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए।
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते
0: नहीं,
1: जाइए।
0: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: जी ये सही कर रहे हैं, तो
0: जी
1: जोश में आकर होश नहीं खोना है।
0: बिल्कुल
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
0: जी
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
0: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है।
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना।
1: जी जी जी सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: जी।
1: ये
0: तो
1: सबसे
0: ये एक
1: इम्पोर्टेंट है
0: सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते
1: जोश
0: हैं।
1: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
0: और
1: से
0: आपकी
1: वो
0: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके
0: वो
1: अनुसार।
0: बाकायदा ईमानदारी से
1: जी
0: बताना है कि
1: हाँ,
0: भाई ये
1: जिन
0: समस्याएं
1: जिनकी
0: हैं।
1: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
0: हाँ, मैं वही
1: इन
0: पूछने आ
1: सबको।
0: रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे।
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
0: जी,
1: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
0: नियमित
1: वो
0: रूप से करते आए
1: नियमित
0: हैं।
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
0: जी, मैं समझ गया।
1: जी
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए।
1: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
1: जी
0: लोग जो हैं

0: वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
1: जी
0: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
0: जी
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं, सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
0: जी
1: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही।
0: आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया
1: जी,
0: अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग
1: सब सभी स्वस्थ रहे
0: तय कर लिया
1: जी।
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।
1: जी, जी।
0: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
1: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
0: जी
1: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
0: वाह, अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग

0: अपनाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके।
0: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: चमत्कार और संभव नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
0: हाँ
1: फूड
0: 5 साल
1: खा
0: में, 2 साल में,
1: खा
0: हाँ इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
1: के जी
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी,
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियाँ मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं, तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी।
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
1: जी
0: मस्तिष्क से ही,
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं
0: जी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
1: जी। आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं,
1: जी
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं, और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं, तो
1: बिल्कुल।

0: बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
1: जी
0: मोबाइल हाथ में है। अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
1: जी
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ। तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हो चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं। जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उसे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
0: जी, एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं,
1: जी
0: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
1: जी
0: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
0: जी,
1: तरह की
0: मन भी कई बार अशांत रहता है।
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
0: क्या
1: प्राणायाम।
0: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
0: जी
1: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
1: हाँ,
0: है।
1: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
0: जी
1: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है,
0: जी
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
0: जी
1: तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद, क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं, तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
0: मतलब हर साल 21 जून को करते
1: 21 जून को
0: हैं
1: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
0: हाँ
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
0: हाँ
1: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं।

0: जी
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
0: जी
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और
1: और
0: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम

0: स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में गीत दीवाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा और नदीम श्रवण का संगीत।
1: देखा

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से। एश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर टू से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है, ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है, शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया।

तरफ से एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि रिमझिम से ये ही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है, यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज, संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए, और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश की बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन, ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकहीं झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर

लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ और यहाँ तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

दीवानी लगती। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है, पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी, और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इस इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं। सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें

सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे दिक्कत हुई, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई, पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।
1: अच्छे

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
2: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों

0: साझा क्षेत्र है मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति

0: मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग पर एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा।

0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर। यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
4: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा

0: क्या है जो मनुष्य को संबोधित है?
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं अब झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।

0: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
1: अच्छा।
2: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है। कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूं।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
1: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो। हाँ? कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
1: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
1: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
1: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
1: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी
1: जी?
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
1: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन नॉलेज की कविताएं पढ़ती हो?
1: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
1: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
1: अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए

0: शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे?
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो मां, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है मां, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ, तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है मां, सच मां, मां हो मां तुम कवि बेंजामिन मलोयस की सचमुच की मां हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी मां।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी।
0: जीनी।
1: हाँ। आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
2: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
2: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं, क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है। जिनी,
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना, सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता। जिनी,
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज

0: कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
1: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है। जिनी
0: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
1: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
0: अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर। यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है।
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा इनकी इतनी हिम्मत। तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: मां हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है मां।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूं।

0: अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
0: अच्छा।

आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं।

0: कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी मौसी
0: जिनी आओ बेटी आओ इस कमरे में चलो आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
2: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
2: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
2: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा यह निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूं इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
0: कौन हो सकता है? कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के एक नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
0: खून
4: खून
0: ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने?
6: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
7: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए।
0: देखो,
7: ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
7: अच्छा, आता हूं।
8: हैंड्स अप!
0: आप लोग
8: जुलूम अंदर देखो, जल्दी, क्विक, कहां है ये सब?
9: ओह, तो आप ही जोसेफ।

0: पूछते हैं?
1: जी हाँ सर।
0: ये कौन है? सर वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी जेम्स पिस्से।
3: कमरे का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
1: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
1: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
0: शराब छूटा कहीं का? किधर है वो शैतान?
3: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
0: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
3: मिल गया सर।
0: क्या मिल गया?
3: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: यू आर राइट
3: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
1: जी
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
1: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
2: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
0: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ तो आप कहिए।
1: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुस आया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
0: उल्टे फिर झूठी कहानी करने लगा।
2: सर ये आप क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
0: यू रास्कल।

0: people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and Gram Panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
0: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have

0: by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से

0: भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य संगीत कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट, once you get the raw material which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil which is being continuously made fertile by more fertilizers, again through natural and organic ways, then you get the produce of those

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: माननीय
0: प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvindu Adhikari, people craning their necks now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी.
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बींग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो

0: कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
1: It relates to the goat production, the laboratories that are there. It relates to the ports that are being developed. It relates to the farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat for developed India by 2047.
0: जी हाँ प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं.
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है. बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है. आज का ये कार्यक्रम साक्षी है. इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है. बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं. आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है. परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम

बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी

मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई, वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर

इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ

हानि पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी।

फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से

0: पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: श्रोते हो, संध्याकाळचे 5:32 होत आहेत। प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलो हर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। मिश्र संगीताच्या कार्यक्रमात आता आपले पुढील गीत जैत्र जैत या चित्रपटातील हे गाणं गायलं आहे आशा भोसले आणि साथीदारांनी। कवी आहेत नादो महानोर, संगीत आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांचं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त विमोचन कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम का संबोधन। आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। शाम के 5:37 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनभावन कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको अपना घर, अपना शहर, अपना स्कूल, अपने दोस्त सब कुछ छोड़कर किसी अनजान जगह जाना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके आसपास युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदा या उत्पीड़न का खतरा हो। ये स्थिति दुनिया भर के करोड़ों शरणार्थियों की वास्तविकता है। हर वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के साहस, संघर्ष और उम्मीद को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, शरणार्थी होना कोई पहचान नहीं बल्कि एक परिस्थिति है। कोई भी व्यक्ति अपने सपनों, परिवार और यादों को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब जीवन और सुरक्षा का सवाल हो तब लोगों को नए ठिकाने की तलाश करनी पड़ती है। ऐसे समय में उन्हें केवल आश्रय ही नहीं बल्कि सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नए अवसरों की भी आवश्यकता होती है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि मानवता की सबसे बड़ी पहचान सहानुभूति और सहयोग है। यदि हम दूसरों के दर्द को समझने का प्रयास करें, भेदभाव के बजाय अपनापन दिखाएं और ज़रूरतमंदों की सहायता करें तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है।

विश्व शरणार्थी दिवस हमें यही संदेश देता है कि हर इंसान को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। आइए हम संवेदनशील नागरिक बने और मानवता, करुणा तथा एकता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध, जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
2: दोस्तों, जून का महीना अपने अंतिम चरण में है। भीषण गर्मी धीरे धीरे विदा ले रही है और मानसून की आहट सुनाई देने लगी है। आसमान में छाए बादल, ठंडी हवाएं और मिट्टी की सौंधी खुशबू बारिश के मौसम में स्वागत का संकेत दे रही है। लेकिन मौसम का ये बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। दोस्तों, गर्मी से बारिश के मौसम में प्रवेश करने के दौरान हमारे शरीर को नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालने के समय में लगता है। ऐसे समय में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त पानी पीते रहें, ताज़े फल और पौष्टिक भोजन लें तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, बारिश के मौसम की तैयारी भी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अपने घर की छतों, नालियों और पानी निकासी की व्यवस्था की जांच कर लें ताकि वर्षा का पानी जमा ना हो सके। घर के आसपास कहीं भी पानी ठहरने ना दें, क्योंकि ये मच्छरों के पनपने का कारण बन सकता है और डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। युवा साथियों, बारिश का मौसम प्रकृति का आनंद लेने का समय है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। बारिश के दौरान बिजली के खंभे, खुले तारों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और यातायात नियमों का पालन करें। यदि आप छात्र हैं या आप छात्र नहीं भी हैं तो आप अपने पास छाता या रेनकोट रखना ना भूलें। ये मौसम हमें प्रकृति के और करीब आने का अवसर भी देता है। वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसी कार्यों में भाग लेकर हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। और अब वक्त है एक प्यारे से गीत की।

इन दिनों मौसम भी बड़ा दिलचस्प है। कहीं गर्मी का असर बना हुआ है तो कहीं बारिश की फुहारें राहत दे रही हैं। ऐसे बदलते मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में हल्का, ताज़ा और पौष्टिक भोजन सबसे बेहतर माना जाता है। आप मूंग दाल का चीला, वेजिटेबल उपमा, पोहा, अंकुरित अनाज की चाट या दलिया जैसे व्यंजन अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। हर शाम के नाश्ते में भुट्टा, भुने हुए चने या घर का बना सूप भी अच्छा विकल्प हो सकता है। बारिश की शुरुआत के साथ सड़क किनारे मिलने वाले खुले और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पर्याप्त पानी पीते रहें, क्योंकि मौसम सुहावना होने पर भी शरीर को पानी की आवश्यकता बनी रहती है। युवा साथियों, स्वाद और स्वास्थ्य का संतुलन ही अच्छे जीवन की पहचान है। इसलिए इस बदलते मौसम का आनंद लें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें।

दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरओ एआरओ कंप्यूटर सहायक की 543 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आपके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 21 जून 2026 तक, जिसके लिए आपकी शैक्षणिक पात्रता किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा या ओ लेवल या सीसीसी अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है, और साथ ही इसमें आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक तय की गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और साथ ही नज़दीकी नेट कैफे जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और बारी है इस प्यारे से गीत की।

तो दोस्तों, आज हमने विश्व शरणार्थी दिवस के माध्यम से मानवता, सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को समझने का प्रयास किया और साथ ही बारिश के सुहाने मौसम की शुरुआत को भी एंजॉय किया। अब चलते चलते कार्यक्रम में इस आखिरी गीत को भी एंजॉय करते हुए चलते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का मन भावन कार्यक्रम युववाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम नमस्कार गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार लेकर कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट की बहार। आपके साथ हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोता साथियों, आजकल हम सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बेवजह खुद को बिजी किए बैठे हैं और जिसके चलते हम व्यस्त और पस्त हैं। यही कारण है कि हम अपना अधिकांश समय व्यर्थ गवा बैठते हैं, जिससे हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा झेलना पड़ रहा है। साथियों, सोशल मीडिया के कई माध्यम ऐसे हैं जो असुरक्षित और खतरनाक जगहों में तब्दील होते जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनका इस्तेमाल सार्थक और रचनात्मक संवाद के लिए करते हैं। साथियों, आमतौर पर यहाँ लोग टाइम पास या मजे के लिए शिकार की तलाश में भटकते देखे जाते हैं। श्रोता मित्रों, पुरुष हो या महिला, यहाँ ये धोखे और ब्लैकमेलिंग के सबसे ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो चैटिंग के दौरान भावुकता के कमजोर पलों में नितांत निजी बातों का कभी कभी थोड़ी संतुष्टि के लिए कामुक संवादों या तस्वीरों का आदान प्रदान कर जाते हैं। साथियों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे आपके इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पर या मैसेंजर, फेसबुक वगैरह पर आने वाले तमाम लोग गलत होते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, हम व्यक्तिगत रूप से जिन्हें नहीं जानते उन पर भरोसा कर उनके साथ अपनी व्यक्तिगत बातें कैसे शेयर कर सकते हैं। हम रोजाना देखते और पढ़ते हैं ब्लैकमेलिंग के शिकार लोगों के बारे में, तो क्यों हम इन खबरों से सीख नहीं लेते। श्रोताओं, ज्यादातर मामले अश्लील संवादों या तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे वसूलने या अकेले मिलने के लिए बाध्य करने वाले होते हैं। ये आभासी दुनिया प्रेम की तलाश की सही जगह नहीं है। बहुत कम भाग्यशाली लोगों की तलाश यहाँ पूरी होती है। साथियों, इस मंच ने बहुत लोगों को ठगा है और छला है और कुछ को तो आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर दिया है। अपवादों की बात अलग है, लेकिन प्रेम अगर आपको मिलेगा तो वास्तविक जीवन में ही मिलेगा। आभासी दुनिया के आभासी प्रेम से सावधान रहें साथियों, और इस प्रेम को अपनों में तलाशें और खूब प्रेम बांटें और बटोरें।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध, जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां

0: उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन। नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, अपनी हमसफर ममता कटरी के साथ। श्रोता साथियों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग आमतौर पर हर दूसरे मूल्य पर अपने व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित रहते हैं। इसलिए ऐसी दुनिया को स्वामी विवेकानंद के इस शिक्षण को अपने भीतर समाहित करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि यदि आपके पास संसाधन हैं, तो आपको उन संसाधनों का योगदान करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जो आपके आसपास दूसरों की अधिक भलाई के लिए है। यदि आप अपने आप को दयालुता के निस्वार्थ कार्यों में शामिल करते हैं, तो आप खुशी की भावना तक पहुंचेंगे, जो कि आनंददायक होगा। श्रोता मित्रों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम असुविधाओं के चेहरे पर हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मानवता की महानता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य किसी भी बाधा को दूर करने की क्षमता रखता है, यदि वो पर्याप्त रूप से लगातार अपने प्रयासों पर कार्यरत रहे। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी असफल हैं, तो घबराएं ना, अपना प्रयास जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।

0: केरल कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है CKYC ID।
1: CKYC मतलब
2: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं श्रोताओं अपनी शक्तियों की। श्रोता साथियों, ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारी है। यह हमारा अहम है जिसने हमारी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि यह अंधेरा है। सच है दोस्तों, जब सारी शक्तियां हमारी है तो फिर सिर्फ हमें जरूरत है उसे पहचानने, जानने, समझने और उसे महसूस करने की, और इसके लिए हमें रखना होगा खुद पर यकीन। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। हर इंसान को अपने भीतर विद्यमान क्षमता को साकार करने के लिए सशक्त बनने की जरूरत है। जिस दिन हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपनी आंतरिक खुशी के लिए और अपने वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के लिए जिएंगे, उस दिन हमें अपनी शक्तियों का वास्तविक पहचान पता चलेगी। उसका उपयोग हम सही दिशा में कर पाने में सफल होंगे। तो श्रोता दोस्तों, उभारें अपनी शक्तियों को और निखारें अपने जीवन को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का सफर बस अब यहीं तक, क्योंकि घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि ली जाए आपसे विदा। इस वादे के साथ कि कल एक नए अंक को रंगीले अंदाज में लेकर आपसे होगी पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे को और स्वीकार करें हमारा स्नेहिल नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 6:30 हुए हैं और अब है वक्त कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम सुगम संगीत का पहला नजराना हम लेकर आए हैं जगजीत सिंह की दिलकश आवाज़ में।

श्रोताओं आइए अब लुत्फ उठाते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजों का। शायर है हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, अभी आप लुत्फ उठा रहे थे जगजीत सिंह की आवाज का। रचना थी वाजिदा तबस्सुम की। आइए एक बार फिर आनंद लेते हैं जगजीत सिंह की आवाज का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। कुछ ही पल में हम आपको ले चलेंगे कार्यक्रम विवरण की ओर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज की सभा के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल हम लेकर हाजिर होंगे 7:21 पर। किसान साथियों से जुड़ी अहम कड़ी कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त होगा 7:30। कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप लुत्फ उठा सकते हैं रात्रि 8:00।

8:30 पर कार्यक्रम होगा पॉप म्यूजिक। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी समाचार। स्पॉटलाइट समाचार ये आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले होगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सदाबहार फिल्मी गीत, ये कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये तो थी आज की सभा के शेष प्रसारित और रिले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको कल की सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। प्रातः 5:55 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, एक बार फिर सुन लीजिए, प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर वक्त होगा विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन का। सुबह 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ आप सुन सकते हैं। 6:50 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत का। 7:10 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का वक्त होगा 7:20। 7:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। 8:30 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत।

जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले होगी 10:05 पर। आपके फोन आपके गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 10:05 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले होंगे 11:00। 11:40 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। श्रोताओं, ये तो थी कल की सभा के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 होने को हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। यह मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समझ

0: समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। December 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
1: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग दर्द निवारण ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मॉनसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मॉनसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा सतना मऊगंज स्थिति सिंगरौली मैयर उमरिया शहडोल नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। ध्वनि तरंगों की लहर

पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:21 हुए हैं। अब है वक्त किसान साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का।

0: कार्यक्रम चौपाल सुनने वाले सभी किसान साथियों को राहुल जोशी
1: और मनीषा गोस्वामी का नमस्कार। और राहुल भैया कैसे हो भाई?
0: हालचाल तो ठीक है मनीषा दीदी। दीदी अभी आज कार्यक्रम चौपाल में आज हम अपने सभी किसान साथियों का स्वागत करते हैं और आज की जो हमारी चर्चा है समसामयिक चर्चा कृषि चर्चा है इसके अंतर्गत दीदी बात करेंगे कि जैसे देखने में आ रहा है कि अभी जिस प्रकार से गर्मी थी धूप थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और निश्चित रूप से इससे हमारे किसान साथियों को राहत मिली होगी।
1: हाँ हाँ, और देखिए हमारे जो किसान साथी अब खेती किसानी की ओर बिल्कुल लग चुके हैं और इस समय जो भी उन्हें फसल लगानी है तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। किसान भाइयों अब मौसम भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और आने वाली जो भी फसल हमारे किसान साथियों को लेना है तो उसके लिए खेती की तैयारी कैसे करें, बीज को तैयार कैसे करें, बीज को किस प्रकार से वो अच्छे सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से बीजोपचार कर सकते हैं, कौन सा बीज लेना है, ऐसी कई तमाम जानकारियाँ जो किसान साथी आप बखूबी इस भूमिका में को निभा लें ताकि आने वाली फसल जो उन्हें लेना है तो उसकी अच्छी तैयारी करके ही वो उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, क्योंकि यदि हम फसल की प्रारंभिक तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं और पिछली जो गलतियां हैं उससे हम यदि सीख ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय की जो फसल होती है वो काफी अच्छी होती है और जो हमारे किसान साथी हैं उन सभी का एक पुराना अनुभव है और अपने जो भी आसपास के किसान हैं या कृषि वैज्ञानिक है, आजकल वैज्ञानिक पद्धति से हमारे किसान साथी कृषि करने लगे हैं तो जो वैज्ञानिकों से सलाह मिलती है, कृषि विशेषज्ञों से जो उन्हें सलाह मिलती है उस अनुसार हमारे किसान साथी खेती कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं और उनका लाभ उन्हें मिल रहा है।
1: बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे अपने किसान साथियों से, किसान भाइयों जिस प्रकार से जो हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देते हैं किस प्रकार से आप बीज को रोपित करें, बीजों का जो अच्छे से उपचार करें, जो भी वो विधि बताते हैं तो उस विधि को जरूर आप अपनाएं और इस विधि को अपनाकर आप अपने बीजों को सुरक्षित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। जैसा हमें अन्न चाहिए तो उस अन्न को उत्पादन के लिए हमें बीजों को सुरक्षित करके ही या अच्छे से बीजोपचार करके ही उसे बोना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, जिस प्रकार से बालाघाट जिले में धान की फसल ली जाती है तो हमारे किसान साथी सभी किसान साथियों ने गहरी जुताई प्रारंभ कर दी है और गहरी जुताई करने के बाद अपने खेतों को तैयार कर लिया है, मेढ़ों को तैयार कर लिया है और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं कि कब वे रोपा बोएंगे और इसके लिए बहुत से हमारे किसान साथी जो अभी इस समय खेत अपने जिन्होंने तैयार किए हैं वे जो जैविक पद्धति से खेती करना चाहते हैं तो उन्हें यह चाहिए कि वे अपनी खेतों में जो अपने कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर, क्योंकि हमारे बहुत से किसान साथी ऐसा समझते हैं कि यदि हम जैविक पद्धति से खेती करेंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो उनकी जो जो उपज है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा में कम होती है लेकिन ऐसा नहीं कि उपज कम हो जाएगी। तो जो नए साथी जैविक पद्धति से खेती करना चाहते हैं हमारे किसान साथी वे कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर इस ओर आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अब समय हो चला है राहुल भैया हमारे किसान साथियों के साथ ये लोकगीत सुनने का, तो चलिए किसान भाइयों आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: और अभी हमने सुना ये लोकगीत। तो किसान साथियों, इसी लोकगीत के साथ अब हम अपने कार्यक्रम चौपाल को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में समय हो चला है किसान वाणी का। तो राहुल भैया, अपने किसान भाइयों के साथ हम अपने अगले क्रम किसान वाणी की ओर चलते हैं।
1: जी हाँ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: पीछे भी कुछ क्वेश्चन है। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को राहुल जोशी का नमस्कार।
6: और आज के इस क्रम में मैं मनीषा गोस्वामी और किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा क्रम होता है हेलो किसान वाणी का, और किसान भाइयों हम आपको बता दें कि आज के इस क्रम में हमारा विषय है खरीफ में धान का रोपा व बवार पद्धति का उपयोग करते समय आवश्यक बातें। किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम बिसेन, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय मुरझर फार्म, तहसील वारासुनी, जिला बालाघाट। सर, आपका हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार, किसान साथियों को भी नमस्कार।
6: बिल्कुल, और किसान साथियों, इस कार्यक्रम में आप अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07632, और आप 292173 पर इस कार्यक्रम में जो भी आप प्रश्न करना चाहें, आप अपने सवालों का जवाब जो भी चाहें, तो इसका आपको उत्तर यहाँ से मिल सकता है। तो किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारी जो विषय है वो भैया बताएंगे आपको।
5: जी दीदी, आज का हमारा विषय है खरीफ में धान का रोपा वो बुआर पद्धति का उपयोग करके करते समय कौन कौन सी बातें, हमारे किसान साथी आवश्यक बातें होती हैं जिसका वे ध्यान रख सकते हैं।
6: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: सर, जैसे कि बालाघाट जिले में मुख्य रूप से धान की फसल होती है, और धान की जो फसल होती है वो धान की फसल हमारे जो किसान साथी मुख्य रूप से दो प्रकार से धान लगाते हैं, एक रोपा या परा पद्धति से, और मशीन से रोपाई आजकल की जाती है। सर, जो बुआर पद्धति है इस पर कौन सी फायदेमंद आप कहेंगे, कौन सी फायदेमंद पद्धति हमारे किसान साथियों के लिए है?
7: देखिए, हमारे किसानों भाइयों के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही पद्धति फायदेमंद है। जब हमारे यहाँ पे कृषि में काम करने वाले मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, तब तक तो परहा पद्धति से किसानों को जो फायदा मिल रहा था, परंतु वर्तमान समय में जैसा हम सब जानते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, कृषि में काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है, इन सब सारे दृष्टिकोण से अगर देखें तो अब जो है बुआर, जिसको हम लोग अभी एक नया नाम भी दिए हैं DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस,
6: जी
7: है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे बालाघाट जिले में पहले से ही बुआर होता था, परंतु वो छिड़का पद्धति से होता था। अब जो है इसके लिए मशीनीकरण जो तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें, पहले सीड ड्रिल आया, फिर जीरो टिलेज मशीन आया, फिर जो है सुपर सीडर आया, और अब तो पर्टिकुलर धान की बुआई के लिए भी एक स्टेप सीडर आ गया है।
6: अच्छा अच्छा,
7: तो अगर हम देखें तो बुआर में किसान का काम समय पे होता है, लागत कम लगती है। इन सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुआर वर्तमान समय में या भविष्य में हमको उस ओर जाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे किसान जो है परहा लगाते हैं जो, या फिर बहुत सारी परिस्थितियां भी निर्भर करती है कि किसान कौन सी विधि से धान उगाए, तो जो है परहा या जो रोपाई करते थे तो उसके लिए अभी हमारे बालाघाट जिले में बहुत तेजी से परहा लगाने की मशीन, जिसको राइस ट्रांसप्लांटर बोलते हैं, उसमें का भी प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
6: तो हमारे किसान भाई भी इसका उपयोग अभी कर रहे हैं?
7: बिल्कुल, बहुत तेजी से इसका रकबा मशीन का भी बढ़ा है।
6: जी,
7: और अब तो, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये भी हो गई है
6: जी,
7: कि खुद किसान अपना तो लगाते ही लगाते हैं, और अब जो है आस पास गाँव के लोगों का भी परहा लगाने के लिए बातें होने लग गई है।
6: अच्छा,
7: और अब तो एक चीज़ ये और अच्छी हो गई है कि पहले किसान बोल देता है कि मुझे इतना मेरा ये खेत है, मुझको इस वैरायटी या इस किस्म का धान लगाना है, तो जो परहा जिसने मशीन रखा है उसको चूंकि पूरी सारी तकनीकी मालूम रहती है कि उसकी खार या रोपा किस प्रकार से तैयार करना है और कब लगाना है, तो वो पूरी सलाह भी उनको देता है।
5: सर, जैसा कि आपने बताया कि राइस ट्रांसप्लांटर मशीन जो है

0: उस सर किस प्रकार से काम करती है, यदि हम किसान साथी समझना चाहें उसको? तो
1: राइस ट्रांसफॉर्मर मशीन के बारे में तो मैं समझता हूँ कि हमारे बालाघाट जिले में दो चार गांवों में तो आई गई है, तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है, परंतु ये एक प्रकार की मशीन है जिसमें 4, 6 और 8 एक साथ उसमें दांते होते हैं जो कि पडल्ड खेत में, जो कीचड़ मचाया हुआ खेत है उसमें ये ट्रांसप्लांटिंग करता है। इसमें जो थोड़ी सी तकनीकी ये है कि आपको जो नर्सरी तैयार करना है, नर्सरी तैयार करने के लिए या तो आप पॉली गर्मी के दिनों में बढ़िया सूखी मिट्टी छनी हुई रख लें या उसमें थोड़ा बहुत खड़ी हुई गोबर की खाद कर लें, उसकी तैयारी थोड़ा आपको पहले करनी पड़ेगी और आप उसको रख लीजिए। जब आपका समय जैसे अभी चल रहा है वहाँ पे उसकी ट्रे आती है या अच्छा। प्लास्टिक की सीट के पूरे भी जमीन समतल होना चाहिए, वहाँ पे प्लास्टिक की सीट बिछा दीजिए और वहाँ पे मिट्टी डाल के सीट डाल दीजिए। जनरली जो है परहा लगाने की मशीन में जो बीज लग रहा है वो लगभग 15 से 16 किलो लगता है।
2: बिल्कुल, इसी बीच एक किसान साथी हम जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद इनसे नंबर हमारा जुड़ नहीं पा रहा है। हम बात कर रहे थे मशीन की।
1: जी हाँ,
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल जरूरी है बात करना, क्योंकि हर चीज में मैकेनाइजेशन हो रहा है और कृषि में भी तो बहुत तेजी से मैकेनाइजेशन हो रहा है
2: जी।
1: तो इसमें जो है लगभग उसकी एक फिक्स साइज की जो है बर्फी टाइप की बनाई जाती है खारों की
2: जी।
1: और जिस प्रकार से हम सामान्य खेत में खार भरते हैं वैसे ही भरना है, परंतु इसके लिए जो मिट्टी साफ पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो परा लगाने वाली मशीनें होती है उसमें दाते रहते हैं तो दाते में पत्थर फंसे ना, इसलिए आपको पहले इसी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इसमें जो बीज दर है वो लगभग 15 से 16 किलो और जो उसकी एक निश्चित साइज की बर्फियाँ बनती हैं वो लगभग बनना चाहिए आपकी 90 से 100।
2: अच्छा।
1: तो 15 से 16 किलो के बीज में इतनी बन जाती है। आप किसान जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है और जब आपका खेत जब परा लगाने का समय हो, आप जैसा रोपाई करने के लिए खेत तैयार करते हैं उसी प्रकार से खेत तैयार कर लीजिए, परंतु सावधानी इसमें ये रखें कि एक दिन पहले का कीचड़ मचाया हुआ खेत है, थोड़ा सा कीचड़ जो है वो थोड़ा टाइट हो जाए ताकि मशीन आसानी से चले, जो परा लगा रहे हैं तो लहराए ना, क्योंकि बाजू बाजू से मशीन घूमेंगी। तो इस प्रकार से तैयारी करके बाकी सारा काम मशीन को करना है, उसके एक्सपर्ट होते हैं चलाने वाले, वो सारे काम मशीन कर देती है।
3: बिल्कुल, यानी सर जो राइस प्लांटर की हमारा किसान साथी उपयोग करना चाहते हैं वे उन्हें इन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद ही वो इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी जी
3: जी।
1: और मशीन भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बहुत कॉस्टली मशीन नहीं है। और इसमें जो परा लगता है उसमें एक चीज ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, जो उसको थोड़ा मैकेनाइजेशन में पास नहीं कर पा रहे, परंतु पौधे से पौधे की दूरी जो एक के बाद एक पौधे लगते हैं वो किसान के हाथ में है कि वो कितने दूर या पास रखवाना चाहता है। अगर आपका खेत उपजाऊ है, फर्टाइल है, आपका जो बीज है थोड़ा सा हाइब्रिड है या अच्छी किस्म का है तो आप थोड़ी दूरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो आप थोड़ी उसकी दूरी को कम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, इसी बीच एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार मैडम।
2: हाँ हाँ नमस्कार, कहिए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: हम सिकंदरा पटेल टोला से बोल रहे थे।
2: हाँ,
4: मदन लाल बिसेन
2: जी, क्या नाम है आपका?
4: मदन लाल बिसेन, ग्राम सिकंदरा पटेल
2: जी। बोलिए मदन लाल जी, क्या प्रश्न है आपका?
4: मैडम जी, मेरा प्रश्न है ये है कि मेरे खेत में क्या है, 2 एकड़ खेती है।
2: अच्छा।
4: मैं क्या है, दातिया जो है 2-3 साल से बहुत आ रहा है।
2: अच्छा।
4: बहुत परेशान है आदमी, फसल कम हो रही है, दातिया ही ज्यादा निकल रहा है।
2: जी जी।
1: अब क्या हो रहा है कि दातिया के बारे में, दातिया हमारे जनरली जो है कि नींदा को बोलते हैं
2: जी,
1: परंतु जिसमें बाद में फूल आता है कोदो सामान का, थोड़ा बड़ा पौधा बनता है, एक हुआ। दूसरा जो है दातिया, बहुत सारे किसान हमारे बालाघाट जिले में जो लांबा होता है ना उसको भी दातिया बोलते हैं।
2: अच्छा।
1: तो थोड़ा सा आप बिशन जी मुझे बताइए कि नींदा है या वो लांबा तो नहीं जिसको परसुड बोलते हैं? चावल चावल चावल धान है, वो धान है, धान समान उसमें चावल बनता है लाल कलर का। मतलब धान की वो, हाँ तो वही मैं बोला कि एक दातिया एक नींदा को भी कुछ किसान भाई हमारे बालाघाट जिले में बोलते हैं और कई दातिया कई किसान भाई जो है लांबा जिसको अपनी लोकन भाषा में बोलते हैं तो उसको भी वो बोलते हैं। अगर देखिए दातिया है तो वो एक निंदानाशक से जाएगा, परंतु लांबा परसुड है तो फिर उसके लिए निंदानाशक काम अभी तक नहीं करते, क्योंकि दोनों एक ही स्पीसीज एक ही प्रजाति की फसल होने के कारण निंदानाशक उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप जो है

0: व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से जो पहले कर लेना था, या अभी भी जहाँ पे आप वाली समस्या है तो आप खार तो एक पर्टिकुलर जगह पे डालोगे और बाकी जगहों में जुताई कर दीजिए, पानी चला दीजिए, फिर एक बार जुताई कर दीजिए, फिर पानी चला दीजिए। थोड़ी सी लागत बढ़ेंगी मगर दो तीन, क्योंकि इसका भी बीज जो है परतों में गिरा रहता है, जो नीचे जमा रहता है वो ऊपर जब आएगा तभी उगेगा। परंतु अब जो दूसरा उपाय है जो वर्तमान में आ गया है, कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एक ऐसा बीज बनाया गया है जिसमें एक ऐसा मतलब अनुसंधान है कि आप पर्टिकुलर उस कंपनी का बीज लें और उसमें एक निंदानाशक भी वो लोग साथ में देते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने इसको लेके आ गई है अपने यहाँ पे, माइको ने लेके आई है, बायर ने लेके आई है, समाना कंपनी ने लेके आई है, मगर वो हाइब्रिड में लेके आई है। थोड़ा सा बीज कॉस्टली पड़ रहा है परंतु चल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और दो साल में हम कृषि महाविद्यालय के द्वारा वो भी उसका वेराइटी भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, परंतु अभी हाइब्रिड चल रहा है जो वर्तमान में, तो उसको आप उसका बीज लीजिए, उसका जो है परहा लगाना है परहा लगाइए, बोआर बोना है बोआर बो दीजिए, और वो एक दवाई देते हैं इमिजाथाइपर के नाम से 400 ml, उसको परहा या बोआर बोने के बोआर के 10 दिन बाद एक बार डालना है आपको 400 ml दवाई। इसमें एक विशेषता ये है कि आपके खेत में परसुड़ या जो लामा है वो भी मरेगा, इसके अलावा आपके धान के खेत में जो भी नींदा आते हैं वो भी मरेंगे, साथ ही साथ अगर जो पिछले साल का कुछ गिरा हुआ धान का भी पौधा होगा तो वो भी मरेगा। सिर्फ वो जो पर्टिकुलर वेराइटी जो हाइब्रिड जिसको आप बो रहे हो उसको छोड़ के आपके खेत में जो भी है वो सारा मरेगा। तो 10 दिन बाद एक बार डालना है और 20 दिन बाद फिर आपको उसी दवाई का दोबारा स्प्रे करना है। थोड़ी सी परंतु ये नई तकनीकी है और हमारे किसान भाइयों को ये थोड़ी महंगी पड़ रही है, तो आपको लाबा के लिए या परसुड़ के लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। परंतु हम आपको मतलब मैं भी कृषि महाविद्यालय में हूँ, अनुसंधान ही करते रहता हूँ, तो हमारा सरकारी काम भी इसमें चल रहा है और आप लोगों को हम 1 से 2 साल में किसान भाइयों को अच्छी किस्म में याली जो विशेषता है उसको डाल के आला बीज उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: सर, जैसा कि हमारे सिकंदरा के श्रोता थे, जैसे कि सर हमारे ये सिकंदरा के श्रोता थे मदन लाल जी बिसेन, इनके सवाल से जुड़ा एक और सवाल है सर मेरा कि हमारे किसान साथी क्या करें कि फसल में कीट और बीमारियां नींदा कम आए।
0: जी बिल्कुल भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारा किसान भाई तो खेती करना हमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, कब खेत तैयार करना है, कब बीज बोना है, कौन सी किस्म बोना है, कितना खाद डालना है, परंतु बेचारा वो परेशान तब हो जाता है जब कई बार कीड़ा बीमारी और नींदा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। और अभी सबसे बढ़िया है क्योंकि ये जो समय है वो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अभी से ही बीज को टीकाकरण करें, समस्या आने के पहले या पड़ोसी के खेत में आई है, क्षेत्र में आई है, तो हम उसको पहचाने, पहले तो कीड़े और बीमारी को पहचाने और उसके बाद उसकी सबसे उपयुक्त दवाई का उपयोग करें और पहली शुरुआत में एकदम हेवी डोज में ना डालें, मतलब बहुत जो स्पेशल दवाइयाँ बनी है उसका अंतिम शस्त्र के रूप में उपयोग करें। क्योंकि पिछले साल एक हमारे यहाँ पे भूरा माऊ नाम का कीट आता है और उसकी वो जो उसकी हमारे किसान भाइयों ने वो दवाई जो सबसे लास्ट स्टेज में डालनी चाहिए पहले ही डाल दी, तो अब वो कीड़े में उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंट पावर आ गया।
1: अच्छा।
0: तो अभी सबसे बढ़िया समय है जहाँ किसान भाई हमारे जिले में बहुत हद तक अभी जो बढ़िया मौसम के कारण बोआर का रकबा बहुत तेजी से बढ़ा है, मैकेनाइजेशन भी बढ़ा है, तो जो बीज आप बो रहे हैं उसको तनाछेदक और पोंगा जिसको गालमेज कहते हैं या गंगई बोलते हैं उससे 1 महीने तक बचाने के लिए आप क्लोरोपायरीफास नाम की दवा आती है 20%, उससे 5 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लीजिए। उससे फिर एक अच्छी दवाई आती है इमिडाक्लोरपीड या थायोमेथाग्राम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें तो आपकी फसल 30 से 40 दिन तक तनाछेदक पोंगा या शुरुआत अवस्था में जो फसलें लगती है उसमें बचाएंगे और बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है। इसी के साथ ही साथ अगर आप चाहें तो फफूंदी नाशक, क्या है कि हमारे यहाँ पर कई बार तना गलन और ब्लास्ट नाम की बीमारी आती है और कई बार बाद में जो एक फाल्स स्मट जिसको हम ब्लाई फूटना बोलते हैं जब बाली निकलती है और उस समय आती है तो उसका जो फफूंद है वो बीच से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो आप फफूंदी नाशक चाहे तो आप जैविक दवाई में सुडोमोनास फ्लोरांस से 10 ml प्रति किजी सीट की दर से उपचारित कर लीजिए या रासायनिक में जो है कार्बंडाजिम प्लस मेनकोजिम नाम की एक दवा आती है जिसमें कार्बंडाजिम 25% होता है, मेनकोजिम 50% होता है, इसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, तो दोनों दवाई 5 + 3 क्लोरोपायरीफास 20% या जो मैंने बताया प्लस कार्बंडाजिम प्लस मेनकोजेब दोनों दवाई से बढ़िया बीज को उपचारित कर लीजिए। उसके बाद चाहे तो आप बोआर बोइए चाहे आप परहा के लिए खार डालिए। तो आपने ये टीकाकरण कर लिया। दूसरा जो प्रमुख समस्या है नींदा की, तो नींदा के लिए आप या तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दें या गहरी जुताई करने के लिए मिट्टी पलटने वाला हल चाहिए, हर जगह होता नहीं है, तो अगर आपके पास खेत जोतने लायक है तो आप कल्टीवेटर से 2 सर जोत दीजिए, जो बीज

0: जो है गर्मी में धूप में बाहर आ जाएगा वो नष्ट कम होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नींदा है वो कहाँ बनता है, धुरे के पास से, जो धुरे में जो हम घास फूस, पहले क्या होता था कि किसान जानवर पालता था, उसका एक नियम था कि फसल खड़ी है वो धान घास काट के जानवरों को खिलाता था, जानवरों की संख्या कम हो गई, घास लाकट कम हो गया तो घासों में बढ़िया फल फूल आ रहा है, फिर वो बीज को बढ़ा रहा है और वो जो धुरे का बीज धुरे में गिरता है पानी की सहायता से वो धुरे के आजू बाजू फैल जाता है। तो मेड़ों की सफाई पे विशेष ध्यान दें, तो मेड़ों को आजकल मेड़ों की सफाई करें, और आदमी के द्वारा या यंत्रों के द्वारा नहीं हो रहा है तो मेड़ों को साफ करने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे नींदानाशक उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करें, परंतु वो नींदानाशक हमारी धान की फसल पे ना पड़ने पाए। इस प्रकार से जो है अभी से सावधानी बरतेंगे तभी नींदा का हम कंट्रोल कर सकते हैं भविष्य में।
1: बिल्कुल किसान साथियों, हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा क्रम है हेलो किसानवाणी का, और किसान भाइयों हम आपको अपना विषय बता दें, खरीफ में धान का रोपा व बवार पद्धति का उपयोग करते समय आवश्यक बातें। किसान साथियों आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 07623229173 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। सर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारे किसान साथी जैविक प्राकृतिक और कृषि को अगर बढ़ावा देना है तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना होगा?
0: जी हाँ, जैसे सभी लोग जा रहे हैं कि रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयाँ जो हम अपने जल जमीन में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम उससे उत्पादित अनाज को खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानव शरीर में कुछ ना कुछ अंश उसका जा रहा है। फर्टी रासायनिक के कारण ये तो क्लियर है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, परंतु ऐसा भी नहीं है, संतुलित मात्रा में अगर अपने किसान भाई अपनी मिट्टी की परीक्षण करवा के करता है तो वो उत्पादन बढ़ाने के हिसाब से सोचा जा सकता है, परंतु कोशिश ये करें कि संतुलित मात्रा में उर्वरक अगर करते हैं तो करें, परंतु जो जैविक जो हमारी परंपरागत खाद हुआ करती थी, खाद मतलब जो है सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है ना, अब चूंकि जानवरों की संख्या कम हो गई, अगर जानवर है भी तो उसको घोड़े से खेतों में डालने वालों की संख्या कम हो गई है, तो इस चीज को किसान भाइयों को कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, इसकी भी बहुत सारी नई नई तकनीकी आ गई है उस माध्यम का उपयोग करते हुए हमको, क्योंकि जो जैविक खादें या गोबर की खाद या होती है वो हमारे फसलों को पोषक तत्व तो उपलब्ध कराती है, साथ ही साथ हमारी जमीन का कि मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधारती है, और जो हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं जो हम यूरिया डीएपी पोटाश डालते हैं वो पौधा उसको डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं करता।
1: बिल्कुल
0: उसको
1: इसी बीच एक श्रोता हम जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ जी हेलो
1: हेलो, कहिए कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं लालगढ़ से बोल रहा हूँ जी।
1: जी क्या नाम है आपका?
2: राजा गोस्वामी।
1: हाँ बोलिए राजा गोस्वामी जी, आपका क्या प्रश्न है?
2: मेरा विजय साहब से ये प्रश्न था कि बुआर में एक एकड़ में कितना बीज लगेगा सर, और परा में लगाएंगे तो एक एकड़ में कितना बीज लगेगा?
1: बिल्कुल।
2: और दूसरा प्रश्न ये था सर कि 30 दिन शुरू के जो रहते हैं परा लगने के बाद, खार लगाने के बाद, तो अपन अपनी फसल को किस तरह से बचा सकते हैं कि ताकि उसमें राई रोग ना लगे?
0: फसल धान का उत्पादन बढ़ाने या कोई भी उत्पादन बढ़ाने में वो 30 दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है गोस्वामी जी।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि धान में पिखाटे कंसे टिलर कितने एक साथ आएंगे, मैं बोल रहा हूँ एक कंसे जो है एक साथ कितने आएंगे, वही धान की उत्पादकता बढ़ाने में सबसे प्रमुख कारक है जो कि 30 दिन में आता है, और वही किसान के हाथ में है।
1: अच्छा,
0: बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, धान की एक बाली में कितने दाने आएंगे, उन दानों का वजन कितना होगा, बाली की लंबाई कितनी होगी, ये उस प्रजाति का आनुवांशिक गुण है, उसको आप नहीं बदल सकते, परंतु आप जो है पिखाटे एक साथ लाना, कंसे एक साथ लाना, वो आपके हाथ में, इसलिए वो 30 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फसल में। अब जो आपने पहला प्रश्न था कि बुआर और परहा में बीज दर कितनी होती है ना, पहले हमारे यहाँ जिले में मशीन जब नहीं आई थी बुआर बोने की, किसान भाई छिड़कवा विधि से बुआर बोते थे, तो सामान्यतः अगर प्रजातियां हैं तो उसका एक मान था कि 30-35 किलो तक बीज प्रति एकड़ वो बोता था, कि उसमें से जैसे धान में 80% मिनिमम जर्मिनेशन होना चाहिए, परंतु हमारे पास उतने अच्छे संसाधन नहीं थे, बहुत सारा बीज नहीं उगता था, इसलिए किसान भाई जानबूझ के ज्यादा बोता था। अब चूंकि सीड्रिल आ गया, अब सीड्रिल आ गया है तो जो अगर वेराइटियां अगर आप बो रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीजें बाजार में चल रही है, एक होती है वेरायटी, जिसमें हमारा 1010 DR 206 DR 281

0: का बीज जो मिल जाता है किस्मों का, तो इसका बीज हमारा किसान भाई 15 से 16 किलो तक मशीन की सहायता से बो सकता है बोआर में और बोर भी रहा है,
1: बिल्कुल
0: है ना। फिर जो है आजकल एक स्टेप सीडर आ गया जो कि एक निश्चित लाइन तो फिक्स है, एक निश्चित दूरी पे दाना गिराता है ना, उसमें आप अपनी बीज दर को 10 किलो तक ले आ सकते
1: हो,
0: है ना। अब बात आई अब, परंतु जो मशीन है हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सारा काम कर रही थी इसके 3-4 सालों से, तो जो वो लोग जो बो रहे थे तो उनने शुरुआत किया था 6 किलो हाइब्रिड प्रति एकड़ की दर से, है ना, क्योंकि हाइब्रिड का बीज महंगा होता है और हाइब्रिड का बीज किसान भाई सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकता है, तो वो 6 किलो। फिर कई जगह पे, क्योंकि हमारे बालाघाट जिले में सारे किसान भाइयों के खेत समतल नहीं है, है ना, उसके लिए बिल्कुल लेजर लेवलर से समतल खेत चाहिए, तो फिर उस बीज की दर को हमने 8 किलो 10 किलो तक बढ़ाया, है ना। अब जो बात ये तो बोआर की बात थी, अब आपने बात किया था परहा, तो परहा के बीज दर की भी वही सिचुएशन है जब हमारे बालाघाट जिले में मेडागास्कर पद्धति, जापानी परहा या SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो उसमें वैज्ञानिक लोग और बहुत सारे लोग बोलते थे कि 2 किलो बीज भी पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए, और होता है, है ना। परंतु अभी हमारा किसान, हर किसान उतना टेक्निकली साउंड नहीं है,
1: जी जी,
0: तो उसको फिर थोड़ा सा हमने बढ़ाया।

0: है ना। अब जो बात तो बुआर की बात थी, अब आपने बात किया था परहा, तो परहा के बीज दर की भी वही सिचुएशन है जब हमारे बालाघाट जिले में मेडागास्कर पद्धति, जापानी परहा या एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो उसमें वैज्ञानिक लोग और बहुत सारे लोग बोलते थे कि 2 किलो बीज भी पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए, और होता है ना। परंतु अभी हमारा किसान, हर किसान उतना टेक्निकली साउंड नहीं है, तो उसको फिर थोड़ा सा हमने बढ़ाया है ना। तो अगर आप 6 किलो बीज, क्योंकि एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा आप ही की भाषा में, कि अगर आप पतला फाइन दान का उपयोग कर रहे हैं तो उसके एक किलो में कम से कम 70 से 80 हज़ार दाने आते हैं। अगर आप मीडियम धान का उपयोग करते हैं जिसका दानों का 1,000 दानों का वजन 18 से 20 ग्राम है, तो उसमें 60,000 दाने आते हैं। और 1010 जैसी धान की जो मीडियम सिलेंडर मोटे थोड़ा तो भारी दाने वाली धान की किस्म है, तो उसमें एक किलो में 40,000 धान आते हैं। अगर आप 1 एकड़ को नाप लें और उसमें खामले जो गाड़ते हैं उसकी भी दूरी है 15x15 सेंटीमीटर में खामले गाड़ रहे हैं, 20x20 सेंटीमीटर में खामले गाड़ रहे हैं, या 25x25 सेंटीमीटर में खामले गाड़ रहे हैं, तो अगर आप 25x25 सेंटीमीटर में अगर खामले गाड़ रहे हो तो उसमें जो आपके खामलों की संख्या, खामले मतलब जो परहा गाड़ते हैं है ना, तो उसमें आपके खेत में 1,60,000 खामले आएंगे। 20x20 में गाड़ते हो तो 2,40,000 आएंगे, और 15x15 में गाड़ते हो तो 30,000 खामले आएंगे। एक जगह पर अगर एक गाड़ी गाड़ते हो या दो गाड़ी गाड़ी को गाड़ते हो, तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि पतले धान में 1 किलो में 80,000 दाने, मीडियम में जो है 60,000 दाने, और बोल्ड सीडेड में जो है 40,000 दाने, आप उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। परंतु फिर वो जब ये याले गणित की बात करेंगे तो आपका जो खार भरने का तरीका, परा लगाने का तरीका है ना, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो बीज दर की बात अगर हम बात करें कि हमारा किसान भाई अगर हाइब्रिड लगाता है परहा में, 6 किलो का उपयोग करता है प्रति एकड़ है ना, और वेराइटियों में जो आजकल बहुत सारा 10 किलो की थैली आ रही है उसका उपयोग करता है ना, क्योंकि पतला धान है, फाइन धान है तो उसमें नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा है, मोटा धान है तो नंबर ऑफ सीड्स कम है
1: जी,
0: है ना। तो अगर आप फाइन का कर रहे हैं 10 किलो काफी है, अगर आप मोटे धान है या थोड़ा भारी धान का उपयोग कर रहे हैं तो उसको 12 से 15 किलो तक ले जा सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बीज की बात की, तो निश्चित रूप से इस पे किसान इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि उसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है।
1: इसी बीच
2: एक शोधा शायद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो हेलो।
3: हाँ सर नमस्ते।
2: हाँ नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं जालीवाड़ा से बोल रहा था, बलिराम बहरा।
2: डहरवा जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए।
3: हाँ जी, मेरा ये था कि मैं बुआई जो है बुआर विधि से करना चाहता हूँ, और मेरे खेत में वो जंगली काटा वाला जो धान होता है और वो भाजी और वो ये कूचा सा पौधा होता है वो बहुत ज्यादा खरपतवार है, तो वो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि धान की बुवाई के समय धान के साथ ऐसा कोई दवाई उसमें मिला दें और उसको साथ साथ छिड़काव करें तो जिससे खरपतवार न उगे, ऐसा कुछ है क्या दवाई?
0: नहीं,
3: जो संबंध में जानकर।
0: हाँ हाँ जी, देखिए मैंने इसके बारे में पहले भी हमारे मदनपुर वाले किसान भाई ने बात की थी। आपने दो चीज का नाम लिया, एक तो जंगली धान का नाम लिया और निंदा का नाम लिया। निंदा को कंट्रोल करना आसान है, धान वैसे तो हमारे बालाघाट जिले के खेतों में बहुत सारे निंदा आते हैं, कईयों प्रकार के आते हैं, परंतु हम लोग उसको जो दो कैटेगरी में बांधते हैं, सकरी पत्ती और गोल या चौड़ी पत्ती वाला है ना, ये दोनों निंदा जो है अपने समय पर उगते हैं। तो ऐसी तो कोई दवाई नहीं है कि आप बीज के साथ में मिला के डाल दो, तो पॉसिबल नहीं, अभी नहीं बनी है। परंतु आपने आपने
3: कि अभी मैं किसी से चर्चा किया था, बोले कोई मार्केट में 7 किलो का जो है बोरी आ रही है, 7 किलो का पैकेट और उसके साथ दवाई भी आ रही, वो क्या 5700 रुपए का आएगा?
0: वही बताया मैंने अभी आपको कि 2-3 कंपनी, अभी मैंने बताया था कि 7 किलो वाला भी पैकेट है और 10-10.5 किलो वाला भी पैकेट है, और इसको बहुत सारी कंपनियां बेच रही है, माइको बेच रही है, बायर बेच रही है, सवाना बेच रही है, और भी कुछ कंपनियां बेच रही हैं, और मैंने जब यही बात किया था ये, परंतु ये हाइब्रिड बेच रही है। हाइब्रिड बेचने से क्या होता है कि हमारा किसान को हर साल बीज लेना पड़ेगा, और मैं बोल रहा था कि हम जो है कृषि महाविद्यालय मुझड़ के माध्यम से हमारे जिले के किसान भाइयों को सरकारी तंत्र ने भी इसको बना लिया, तो हम ये जीन याली जो विशेषता है वो हम वैरायटी में भी डाल रहे हैं ताकि किसान एक बार बीज ले ले तो अपना कई साल तक बीज खुद बना ले। तो वो जो है देखिए, निंदा अगर आप जंगली धान वाली समस्या है तो वर्तमान में यही समाधान है उस पर। दूसरा एक और समाधान था परंतु वो समय का अभाव है, तो कभी आप हमारे झालीवाड़ा के हैं, मुरझड़ एग्रीकल्चर कॉलेज पास में, मेरा नाम उत्तम बिसेन है, आ जाइए और लंबी चर्चा कर लेंगे है ना।
3: जी, जी,
0: तो है ना। और जो है निंदा नाशक की जैसे आप बात कर रहे थे, तो परहा रोपा बुआर बोने के और परहा लगाने के 2 से 3 दिन के लिए भी प्री इमरजेंसी निंदा नाशक उपलब्ध है, एक निंदा नाशक 10 दिन के लिए भी उपलब्ध है, एक निंदा नाशक 20 से 25 दिन के लिए भी उपलब्ध है, और एक निंदा नाशक अगर 35-40 दिन का भी हो गए हैं आप तो उसके लिए भी निंदा नाशक उपलब्ध है। समस्या का समाधान है, बस हमको समय पर जानकारी होनी चाहिए और हमारा किसान करने के लिए तैयार होना चाहिए।
3: जी जी,
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया
3: सर, मैं अवश्य आपसे मिलूंगा मुरझड़ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: और सर, जिस प्रकार से हम आप बात करना चाहेंगे कि उसमें कुछ जरूरी जानकारियां, आवश्यक बातें व्यवहार पद्धति से, तो अभी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे किसान भाई जो काम कर रहे हैं, तो हमारे जो किसान साथी हैं, राहुल भैया प्रश्न है
1: जी बिल्कुल दीदी, जो मुख्य रूप से एक प्रश्न हम आज पूछना चाहेंगे कि चिन्नौर की कम ऊंचाई वाली नई प्रजाति किस्म जो आप तैयार की है, उस विषय में सर आप कुछ
2: जी। बालाघाट जिले का धान शान है, धान में भी चिन्नौर धान बहुत बड़ी शान है, और हमारे मध्य प्रदेश को पहला GI जो है चिन्नौर, बालाघाट चिन्नौर के नाम से मिला है, जिसके लिए हमारे को अब परंतु वो समस्या ये थी कि 160 दिन का होता है, 160 से 170 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसके कारण वो बाली आते ही गिर जाता था। अच्छा। उसमें मशीनीकरण नहीं कर सकते हमारे किसान भाइयों को इसकी खेती करने में, लगाना तो सब चाहते थे परंतु गिर जाना, उत्पादन कम होना, लंबी अवधि है ना, ये समस्याओं के कारण किसान इसको कम लगाता था। हम लोगों ने 7-8 साल से इस पे काम किया, GI के बाद से हमने काम किया, और अभी हमने धान की इस चिन्नौर के टाइप की 3 वेराइटियां बना ली है, और हमने इस साल हमने जो हमारे लेवल पे परीक्षण होते हैं वो हमने कर लिए हैं। अच्छा। हमारे भारत देश का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, वहां से भी हमने परीक्षण करवा लिया है, और अब हमने किसानों, क्योंकि फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन तो हमको किसान देगा। अच्छा। तो हमने अपने बालाघाट जिले के 10 किसानों को इन तीनों टाइप का चिन्नौर का बीज, और जो चिन्नौर उगाने वाले फेमस क्षेत्र हैं, चाहे कायदी हो, लेंडेजरी हो, कोपे हो, चिल्ले हो, लोहारा हो, नेवरगांव हो, जहां सबसे अच्छा माना जाता था, वहां के किसानों को इस साल ये बिल्कुल उपलब्ध करा दिया है। अब सबसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं इसकी ऊंचाई कम हो गई है, ऊंचाई कम होने से इसका उत्पादन जस्ट डबल हो गया है।
0: अच्छा।
2: अब बस अब किसानों का फाइनल रिजल्ट हम लोग को नवंबर तक मिल जाएगा, और फिर हम इसका बीज लार्ज स्केल में किसानों को वितरण करना चालू कर देंगे।
0: बिल्कुल। अब छोटे रूप में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जिसमें जो सावधानियां हैं वो आप आवश्यक बातें सहित इन्हें हमारे किसान भाइयों को बता दें।
2: जी
0: हमारे पास समय कम है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस साल बढ़िया हमारे यहाँ पे जो सब प्रयास कर रहे थे कि जो हम लोग भविष्य में एक समस्या देख रहे हैं कि जो पानी की समस्या है, क्योंकि बुवार करने से किसानों के खेत का पानी जमीन के अंदर घुसता है, जमीन का वाटर लेवल बढ़ता है ना, तो बुवार का रकबा बढ़ रहा है, परंतु उसकी जो समस्या है किसान भाई की, जो अभी भी आपसे यहाँ पे पूछ रहे थे, निंदाई, तो निंदाई का नियंत्रण करने के लिए कृषिगत क्रियाएं करें, एक पावर वीडर आता है, अगर आप सीड्रिल से बुवार बोते हैं तो एक पावर वीडर आता है पेट्रोल से चलने वाला, वो अगर आप उसको लाइन से अगर आपने धान बोए, पावर वीडर सस्ता आता है, उसमें 1-2 लीटर पेट्रोल लगता है, एक आदमी लगता है, वो निंदाई कर देता है ना, और नहीं तो फिर रासायनिक दवाइयों में भी बहुत सारे समाधान है जिसके बारे में आप जानकारी लेके, क्योंकि निंदानाशकों के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि निंदानाशक का समय, दवा की मात्रा और उसकी विधि, इन तीनों चीजों के बारे में जानकारी अगर किसान भाई को है
0: तो बिल्कुल इसका
2: तो अच्छा रिजल्ट आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल किसान साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी और हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताई, तो आज के इस क्रम से किसान भाइयों हम विदा लेंगे, और आपको बता दें कि आज के इस क्रम में तकनीकी सहयोग रहा अरुण सिंह पड़ते और आशीष रांगडाले जी का, तो इसी क्रम से स्वीकार्य मनीषा गोस्वामी
1: और राहुल जोशी का
0: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब है वक्त कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला नजराना हम लेकर आए हैं फिल्म शान से। मोहम्मद रफी और आरडी बर्मन की आवाजों को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रामपुर का लक्ष्मण। आइए सुनते हैं इस फिल्म का तराना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।
1: हाँ? क्या कहा?

श्रोताओं, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाजों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। रचना आनंद बख्शी की और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

श्रोताओं, अभी आपने लुत्फ उठाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इज्जत का ये तराना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जिसके लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और रचना है साहिर लुधियानवी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों को फिल्म श्री 420 में। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत का सफर बस अब यहीं तक। अनुमति दे अपनी हम सफर ममता कटरे को। FM बैंड 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब है वक्त कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का। कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का पहला तराना ये सुनते हैं लक्की अली की आवाज में।

श्रोताओं, कार्यक्रम पॉप म्यूजिक में आप लुत्फ उठा रहे हैं लकी अली की आवाज का, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक बार फिर लकी अली की आवाज में।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप म्यूजिक यहीं संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि का 8:45 हुए हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया।

0: भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है त्रिशूल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: Indeed, International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
4: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
3: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
4: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थाएं हैं, हमारे भी आयुष की भी

0: जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग, कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया। लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहां पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम, हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट एक कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी

0: कि हमने विजय के लिए भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहां तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है। हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने भी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए। तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगेगी कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देखे ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे

0: कि देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा। कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है। अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी, योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे में, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो एक रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: Vivid Bharati.
5: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बसु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

0: फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।
1: चलत मो

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन

में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई। मेरा

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह प्रवेश।

आविष्कार और गृह प्रवेश ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के

0: रही थी। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

21 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सी

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहां समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पड़ती है। वो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यूं ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

स्याह रातों में, दिन के उजालों में एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूं मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब, इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब है वक्त कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत के साथ मैं हूं आपके साथ, आपके हम सफर ममता कटरे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, आरडी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और फिल्म का नाम है प्यार का मौसम।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों के लिए गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और फिल्म है अप्रैल फूल।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं फिल्म बारिश से। श्री रामचंद्र का संगीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की आवाजों के लिए गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं हसन कमाल की शब्द रचना को फिल्म तवाइफ्स में। रवि के संगीत निर्देशन में आवाजें दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, अब हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर फिल्म अनाड़ी का ये तराना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी।

दूर गगन की राहों में। आइए सुनते हैं इस फिल्म का तराना आशा भोसले की आवाज में, किशोर कुमार का संगीत, शैलेंद्र का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म हम दोनों से, जिसे आवाज दी है आशा भोसले, मोहम्मद रफी ने, संगीत तैयार किया है जयदेव ने और गीत लिखा है साहिर ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार।
1: साथ में सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Meteorological department has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met department has predicted heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ आपसे होगी पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।